लाते हैं कि साहब हज बंद, हज नहीं होगा, पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज करेंगे, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए उनकी कोशिश यह है कि जो हज की क्वालिटी है, जो असल उसका फलसफा है, उसको छीने। जहां पे जाके मुसलमान जब हज को अंजाम देता है तो बहुत सारे अरकान अंजाम देता है, लेकिन कितने ऐसे हुज्जाज हैं कि जब किसी रुकन को अंजाम देते हैं तो उसके फलसफे और उसके पस मंजर क्यों अल्लाह हमसे ये करा रहा है? भाई आप सफ़ेद या मसलन दो कपड़ों में एहराम बांध के हज कीजिए या कोट और पैंट पहन के, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? सिला कपड़ा हो बगैर सिला हो अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका मतलब कि इसका ताल्लुक हमारे नफ्स से है, हमारी ज़ात से है। कितने बेचारे हैं जाते हैं और तीन दिन तक वहाँ भीड़ में परेशान होते हैं, धक्के खाते हैं और जाके मीना में कंकरियाँ मारते हैं, लेकिन उनके जहन में एक बार भी नहीं आता कि क्यों इतने पुराने दुश्मन को कंकरियाँ मरवाई जा रही हैं। नहीं है फलसफा। सही मानों में देखा जाए तो ये भी एक कोशिश है खाने काबा को खाली रखने की, बाकैफियत हज से, क्वालिटी वाले हज से। इसीलिए जब भी ये मौके आते हैं या जो लोग बताते हैं कि हम हज और ज्यारत के लिए जा रहे हैं, उनसे गुजारिश हम करते हैं कि फलसफे के साथ पहचान के कीजिए। अगर इंसान की निगाह खाने काबा पे पड़े तो उसके अंदर एक तौहीद का जज्बा पैदा हो, उसकी तौहीद में तब्दीली पैदा हो, अपने ख्वाहिशात अपने नफ्स की चीज़ों को कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। जिस वजह से कि बाज़ लोग जाते हैं और जाके वहाँ पे जाके अपनी मसलन शॉपिंग और घूमना और इन सारी चीज़ों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। मरकज़े तौहीद है वो। बहुत सारे ऐसे अरकान हैं कि जो हमसे कराए जाते हैं, इनको गौर करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान जमा हो जाए ये मुसलमानों के लिए कुव्वत है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि अगर कैफियत नहीं है, क्वालिटी नहीं है तो फिर बेकार। नहीं, हर हाल में कुछ ना कुछ फ़ायदा है, लेकिन जो असल फ़ायदा है उसके हिसाब से बेकार। उस एतबार से चूंकि हम उस वक्त उस जगह तक नहीं पहुंच रहे, लिहाजा अगर मुसलमान फलसफे के साथ जाके हज को अंजाम दे, मतलब मुसलमान तो इतना भी नहीं सोचता, वहां जाते हैं सब लोग एक ही सफ में खड़े होके हर फिरके वाले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर उनमें से बाज ऐसे हैं बेचारे शरपसंद कह लीजिए जो भी वापस आते हैं तो फिर आके अपनी मस्जिद में ही कहते हैं कि साहब नहीं आप अपने फिरके की मस्जिद में पढ़िए, हम अपने फिरके की मस्जिद, तो फिर वहां पर क्या था, क्या सीख किया वहां से तुम? ये जो एकदम सामने की चीज है ना, ये हालात हैं आज के उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं ये। उसके पीछे और भी बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे इलाल असबाब हैं, जिनके हाथ में इंतजाम है, जिनको पैगाम देना चाहिए मैसेज, वो भी अपने काम को नहीं पूरा कर रहे हैं, जो फलसफा है वो भी नहीं पहुंच, बहुत सी चीजें हैं कि जो लोगों तक नहीं पहुंच रही। लिहाजा यही बट जाना, साथ हो के भी एक साथ ना होना, ये इस्लाम की तज़ईफ है, और साथ हो जाना ये तकवियत है। हज तकवियत के लिए है दीन की। लिहाजा खाने काबा को खाली नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ इस मफहूम में नहीं है कि वहां पे हुज्जाज का जाहिर नहीं, कम से कम मिनिमम मफहूम यह है कि मसलन हाजियों से खाली ना हो, लेकिन फिर उसके बाद जिसका मफहूम आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी के एतबार से आगे की तरफ जा रहा है। और फिर इस बात को अर्ज करेंगे कि ये सारी चीजें इस बुनियाद पे है कि इंसान फिक्र करे। कुरान ताज्जुब करता है उन लोगों पे जो फिक्र नहीं करते, वो फिक्र नहीं करते ये। और सामने की चीज है, एक इंसान के सामने खाना रखा है, भूखा बैठा है, अरे कोई भी देखेगा क्यों नहीं खाना खा रहा, भूख भी लगी है, खाना भी क्यों नहीं खा रहा। हमको फिक्र की जरूरत दी और अल्लाह ने अकल भी दी है, तो है नहीं ताज्जुब की बात, खाना तो फिर भी बाहर रखा है उसमें हाथ हो तो उठाना, फिक्र तो आदमी लेटे लेटे भी कर सकता है। कितना अहमक आदमी है, फिक्र नहीं कर रहा, दिमाग रखे हुए, अकल रखे, अल्लाह ने दिया है सब कुछ है, इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको, है कि नहीं? अजीब बात है, अजीब मियार।

नेकियों से रोकते हैं। तो तौफीक पहली चीज, दूसरी चीज वाएज़ मिन नफ्से, दूसरी चीज जिसकी इंसान को जरूरत है, जिसका वो मोहताज है, वो अपने नफ्स की नसीहत। हमारा नफ्स, ये हम अपने नफ्स को टेस्ट करें कि होना ये चाहिए कि हमारा नफ्स 24 घंटे एक्टिव रहे। इस्तेलाह 24 घंटे कहा जाता है, जाहिर है जब सोएगा तो नफ्स नहीं नसीहत करेगा। 24 घंटे एक्टिव रहे यानी हर काम में। इसी जगह हमने किसी खुतबे में बात पेश की थी कि रवायत में है कि हर चीज में इंसान के लिए इबरत है। इंसान किसी की अच्छाई देखे, खराबी देखे, कुछ भी देखे, सबसे पहला काम यह हो कि हमारा नफ्स हमको नसीहत करे। इत्तेफाकन हम दूसरों की नसीहत और उनकी अवजोई में इतना घिर जाते हैं कि अपनी हमको नसीहत और अपने उजूब की तरफ मुतवज्जे होना याद ही नहीं रहता। हर मामले में नफ्स सबसे वो, हाँ, नफ्स सबसे पहले अपनी जात के बारे में सोचे, उसको परखे। नसीहत किसे कहते हैं, वाज किसे कहते हैं। तो दूसरी चीज जिसकी हमको जरूरत है, जिसके हम मोहताज हैं, वो वाज मिन नफ्से, अपने नफ्स की नसीहत। तीसरी चीज वकबूल मिम्मन यनसहु, जब तक इंसान का नफ्स आमादा नहीं होगा उस वक्त तक बाहर की कोई नसीहत उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। रसूल ने जब मक्के में नसीहत की थी, रसूल की नसीहत में और जबान के असर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कितने ऐसे लोग थे कि जितने रसूल तबलीग करते गए नसीहत, उतना उनके शर में इजाफा होता गया। क्यों? इसलिए कि वो इंटरनल रसूल की नसीहत को लेने के लिए आमादा नहीं थे। कितनी चीज़ें हैं कि जब हमको नसीहत होती हैं, की जाती हैं हमारे सामने, चाहे वो ज़बानी एतबार से हो, चाहे वो अमली एतबार से हो, चाहे वो तहरीरी एतबार से हो, आयात के एतबार से हो, रवायात के एतबार से, किसी भी एतबार से हो, नसीहत आती है हम तक। ये नहीं कोई कह सकता है कि हम तक कोई नसीहत नहीं पहुंची, नसीहत आती है। हमारी गफलत की जो दीवार है वो नसीहत को हम तक पहुँचने नहीं देती, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कभी तकब्बुर, कभी ओजब, खुदपसंदी। खुदपसंदी का यही तो काम है ना, इंसान को ये समझाते हो तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम में कोई कमी नहीं। जब हम ये सोचने लगे कि हम एकदम परफेक्ट हैं, हम में कोई कमी नहीं है, तब कोई भी नसीहत आएगी उसको दूसरों के लिए देखेंगे, अपने लिए नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे ऊपर तो दीवार खड़ी होगी ओजब की, खुदपसंदी की। तो नसीहत को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिल सख्त हो गया, पत्थर हो गया। बीज नरम जमीन पर अगर डाली जाए तो फिर उसमें पेड़ निकलता है, पत्थरों पर थोड़ी निकलता है, जाया हो जाता है बीज। नसीहत ऐसी जगहों पर जाया हो जाती, नसीहत तब कारगर होगी जब दिल नरम हो। लिहाजा ये जो अखलाकी प्रॉब्लम्स हैं और जो नफ्स की प्रॉब्लम, इसकी वजह से इंसान नसीहतों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फौरन जो है दूसरों के ऊपर भेज देता है, दूसरों की तरफ उसको मोड़ देता है। हाँ, फला मुश्किल फला में, फला फला में, फला फला में। कभी एक होता बैठ के यही सोच लेगी क्या हमें कोई मुश्किल नहीं। ये बुनियादी रास्ता होता है इंसान के इस्लाह नफ्स का, अपने नफ्स। और ये सबसे बुनियादी काम हमारा ये है कि हमारी, हम अपने नफ्स की इस्लाह करें, हम हमारे नफ्स की इस्लाह करें। खूब, ये तीन चीजें हैं कि जिनको इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने एक मोमिन के जरूरत के तौर पे बयान किया है कि मोमिन की जरूरत यह है, नियाज यह है, जरूरत यानी उसकी हाजत यह है। दूसरी मुनासिबत ज़िलहिज के आगाज में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सिद्दीक़ा तहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शादी। हम अली वाले हैं, ये बात सिर्फ साबित ज़बान से साबित नहीं होती, ज़बान तो दावा है, साबित होती है अमल से। लिहाजा अगर हम अली वाले हैं तो हम ये देखें कि हमारी नमाज अली की तरह है, रोज़ा अली की तरह है, हमारे अखराजात अली की तरह हैं, हमारी फैमिली लाइफ अली की तरह।

हमारा बिजनेस कारोबार अली की तरह है, हत्ता हमारी शादियां हैं अली की तरह। आज हमारी शादियां इसराफ का मरकज बन चुकी हैं, पता नहीं क्यों। माल की नुमाइश का जरिया शादी हो गई, हमारे पास इतना माल है, और फिर देखा देखी वो लोग जिनके पास नहीं होता है वो भी कर्ज लेते हैं। बाद में एक अरसे तक बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी देर की वाहवाही के लिए लोग कहें हाँ माशा। ये एक समाजी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे बढ़ के दूसरी प्रॉब्लम वो चीज़ है कि जो शादी के साथ बनवाने गुनाह होती है, ना महराम, मिस गैदरिंग, इसराफ, ये चीज़ें तो हराम हैं। तो शादियों को देखें तो मालूम होगा कितने अली वाले हैं। हम लोग कहते हैं ना शादी, जो किसी सुनते हैं शादी, माशाल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक करे, जिसका आगाज ही हम हराम काम के जरिए से कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ मुबारक हो सकती है। अगर शादियां मिक्स गैदरिंग के जरिए से हो रही हैं तो ये तो बुनियादी आगाज ही ना, जिस जगह पे ये तकरीब हुई है, जहां से ये शादी हुई है, वो तकरीब ही हराम वाली थी, मिक्स गैदरिंग वाली थी, कैसे हम उसके मुबारक होने की दुआ और कैसे वो दुआ कबूल हो सकती है। गौर करने की चीज़ है। सिर्फ ये नहीं कि मसलन अगर अली ना होते जनाब फातिमा का कोई कफ नहीं था और वहाँ जनाब फातिमा ना होती तो वहाँ, सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इन लोगों ने जब शादी की तो हम ये देखें कि कैसे उन्होंने क्या मेयार बनाया कि जो लड़की ढूंढी, क्या मेयार बनाया जो रसूल ने लड़का ढूंढा, क्या मेयार बनाया कि जिसकी बुनियाद पर निकाह हुआ, किस बुनियाद पर शादी हुई, कैसी शादी हुई, शादी में क्या हुआ। ये भी चीज़ें तो हैं ना हमारे लिए सीरत, सिर्फ ये थोड़ी है कि हम खाली वो दो चार कलाम पढ़ लें और तारीफ कर लें और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। आया आज हम लड़की और लड़का उसी मेयार पर तलाश करते हैं जिस मेयार पर मौलाए कायनात और सिद्दीक़ तहरा ने तलाश किया था। गौर करने की चीज़ है, उनके और हमारे मेयार में अगर फ़र्क है तो आया ये चीज़ साबित करती है कि हम अली वाले हैं। दावत फिक्र है ये। शादी के बाद की प्रोग्रामिंग जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से सवाल किया कि अली आपने हमारी बेटी को कैसा पाया, क्या जवाब था। अव्वल तो ये सवाल ही आज के ज़माने में फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी फिक्रें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। मौला का क्या जवाब था, इताअत परवरदिगार में बेहतरीन मुआविन पाया। ये बताता है कि शादी के बाद के अहदाफ, मकासद, प्रोग्रामिंग, उसकी बुनियाद क्या है, हमारे यहाँ क्या प्रोग्रामिंग होती है। काफ़ी कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया से मोहब्बत, ये खुद एक बुत परस्तिश है, बुत की परस्तिश है। ये बुत होता है, हमेशा से हमारे यहाँ होता आया है, हमेशा से हम करते आए हैं, हमारे बाप दादा ने किया है, ये किया वो किया, ठीक है, उन तक बात नहीं पहुँची थी, उन्होंने किया, हो सकता है कि शायद अनजाने में किया हो तो अल्लाह उनको गुनाह भी ना, अजाब भी ना दे, लेकिन अगर हम जान के कर रहे हैं तो हम तो फिर मुस्तहक होंगे सजा के। खूब शादियों में इस्लाह की सख्त ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है। मौजूदा जो हालात हैं, अजीब हालात हैं, और दिन ब दिन बड़े पैमाने पे तब्दीली होती जा रही है, अरब ममालिक दिन ब दिन उनकी हकीकत खुल के सामने आती जा रही है, और यह बात बाकायदा अब साबित हो रही है कि ये अमेरिका और इसराइल के पस्तरीन ग़ुलाम हैं। शायद ग़ुलाम कहने से उनकी वो औकात और हैसियत बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होने पाई, पस्तरीन ग़ुलाम, नहायत कितनी पस्ती तक। बहरैन जो कि एक तूलानी मुद्दत से ऐसे मौके पे, जबकि पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद एक मजबूती है, इस्लाह का रास्ता है, बेहतरीन रास्ता है, फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदे दिख रहे हैं, ऐसे मौके पे एक तूलानी अरसे से बहरैन में शियों के ऊपर जुल्म करके इस आग को मुसलसल भड़काने की कोशिश हो रही है। अगरचे वो कामयाब नहीं है, क्योंकि इन हुकूमतों को अब ये भी समझ में आ गया कि इनकी कोई बहुत ज़्यादा औकात नहीं है, दुनिया के एतबार से भी इनकी

पैमाने पे जाके बेच चुके हैं कि अब वहां से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इस हद तक पस्त है ये। बहरैन जो कि मुसलसल तशय्यों पे जुल्म कर रहा है, इन हालात के बाद से, खास करके माह मुबारक रमजान की जंग के बाद से, बहरैन में शियों के खिलाफ जो एक जबरदस्ती जबर और ये इस तरह की कार्रवाई है वो काफ़ी तेज कर दी गई है। गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हत्ता बास को वतन से निकाल दिया जा रहा है और बहुत सारे बहरैनियों को कैद किया गया है, हत्ता मौत की सजा दी जा रही है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, 31 लोगों की लिस्ट है न्यूज़ में, यहाँ पे वक्त नहीं है कि हम उन सबको पढ़ें, ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे, जिसमें अक्सर उलमा कि जिनके खिलाफ बहरैन की हुकूमत ने कार्रवाई की है, लिस्ट है 31 लोगों, किसी को भी चाहिए होगा तो दे दें। जो भी है, अलबत्त ऐसा नहीं सिर्फ 31 ही, इससे पहले भी नाने कितनों पर हो चुकी है, उसके बाद भी अब तक न्यूज़ से अब तक में हो चुकी है और काम तो उनका चल ही रहा है, जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला चल रहा है। जमीयतुल अमालुल इस्लामी, इन्होंने बहरैन की आवाम से इस बात की गुजारिश की है कि वो पुरअम तरीके से इसके खिलाफ एहतजाज करें। इसी तरीके से यमन के उलमा ने भी अपने बयान में इस बात की अपील की है कि इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करें। हम सब की भी जिम्मेदारी है, दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, हमको आवाज़ उठाना चाहिए। हम अपने यहाँ जो भी मुमकिन हो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो भी जुल्म कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, प्रोग्राम जैसे भी मुमकिन हो हम आवाज़ उठाएं। बारह इस बात को अर्ज़ किया और अपनी आँखों से भी देख लिया है, जुल्म की मिसाल आग से बदतर है। अगर इंसान आग लग जाने पे ये बैठा रहे सोच के कि पड़ोसी के घर में है, हमारा घर तो महफूज है, तो ये आग रुकने वाली नहीं है। आग को आपके घर पहुंचने के लिए फिर भी एक राबता चाहिए, सिलसिला। जुल्म को राबता नहीं चाहिए, फिजाएं ही उसके लिए राबता, अगरचे बाज़ औक़ात आग के लिए भी होती है फिजा। ये हमारी जिम्मेदारी। जल्दी से एक दो बात और, गज़ा में मुसलसल भुखमरी, कत्लेआम, ये सारी चीज़ें शुरू हैं। ये मत समझें कि जंग रुकी हुई है, जंग बिल्कुल नहीं रुकी है। लबनान से मुसलसल जंग चल रही है, लबनान हिजबुल्ला पे मुसलसल इसराइल हमला कर रहा है, दूसरी जगहों पे हो रहा है, ख़ास करके गज़ा के मज़लूमीन पे वो जुल्म, वो जो बंदिशें थी वो सब अपनी जगह पे बाकी हैं। एक बहुत अहम चीज़ है जिसको बहुत जल्दी सर्च कर दें, पोप लियोन 14वें, इन्होंने जमहूरी इस्लामी ईरान के जो सफ़ीर हैं वेटिकन में, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुख्तारी, उनको सरीर मुकद्दस का सबसे बड़ा सिफारती एवार्ड दिया। ये एवार्ड उन लोगों को दिया जाता है कि जो मसलन सफ़ीर हों या इस तरह के लोग हों कि जो अमन के लिए और रवाबित को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं। पोप की तरफ से ईरानी सफ़ीर को एवार्ड दिया जाना आज के इस माहौल और इस तारीख में बहुत अहम है, जबकि इससे पहले पोप अमेरिका की इन हरकतों की मजम्मत कर चुके हैं। वो सारी चीज़ें आपकी निगाहों के सामने हैं। आखिर में बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको आमाले सालिहा की तौफीक बदलाम आले कबीहा से महफूज रखें, पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दें, बारेला हमारे मरहूमीन को बख्श दें, पालने वाले इस्लाम व मुस्लिमीन की हिफाजत फरमाएं, बारेला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद कर दें, पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रखें, बारेला रहबर व मराजे को तूल उम्र इनायत फरमाएं, पालने वाले हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं, हमें उनके आवान व अंसार में शरीक होने की तौफीक इनायत फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।

करते हैं या नहीं करते? बहुत करते हैं। 40 साल पहले इतना जिक्र नहीं था। अगर किसी को ना याद हो तो मैं बता रहा हूँ, 40 साल पहले मैं कराची में एक शिया आबादी में रहा करता था, ईरान जाने से पहले। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, 40 साल पहले उस आबादी के लोगों को दुआए सलामती इमाम ज़माना नहीं आती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 की बात बता रहा हूँ। ज़ाहिर है यहाँ जो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वो 84 में पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन 84 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, दुआए सलामती नहीं जानते थे। इलाही अज़मल बला सीखे हुए चंद साल गुजरे थे। दुआए नुदबा कराची में कहीं नहीं होती थी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत, और मैं शिया आबादी में रहता था। दुआए कुमैल शुरू हुए हुए 3-4 साल हुए थे। 84 में हमारा ये आलम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत तरक्की हो गई है, अभी सबको दुआएं काफ़ी आ गई हैं। शबे कदर के आमाल में मुट्ठी भर लोग आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत तरक्की हो गई है, बहुत तवज्जो हो गई है। तो अब इस तवज्जो में होते हुए कुछ लोग एक सवाल करते हैं, वो ये कि मौलाना हम अपने बच्चे को चाहते हैं इमाम की नुसरत करें, इमाम के लश्कर में पहुँचे, क्या करें, कैसे पहुँचे? अच्छा, अब मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं उसको हदीसों की कोई किताब बता दूं, जैसे मैं एक अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूं, बहुत नफीस एक किताब थी, अरबी में लिखी गई थी, उसका नाम था मुंतखबुल असर, उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ जमाल मुंतज़र, इंतहाई मुस्तनद, इंतहाई खूबसूरत किताब, उर्दू में मौजूद, इंटरनेट पर अवेलेबल। किसी को वक्त के इमाम की मुनासबत से अहादीस का मुताला करना हो, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मुमकिन है कि एक किताब बता दूं जो मैंने बता दी, लेकिन मुझे पता है कि हमारी कौम को किताब पढ़ने की आदत नहीं है, साफ बात है। तो मैं एक और काम करूंगा, मैं एक मिसाल देता हूं और मैं आपसे उस मिसाल के ज़रिए से ये पूछूँगा कि क्या ऐसा आदमी इमाम के लश्कर में होगा, उससे हम ये सीख पाएंगे कि कैसा आदमी इमाम के लश्कर में होगा। मैं आपसे अभी पूछता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ। फ़र्ज करें आपसे कोई ये कहे, इंशाल्लाह नहीं कहेगा, सिर्फ फ़र्ज़ कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपसे कोई ये कहे कि इमाम का लश्कर होगा, उसमें एक बंदा ऐसा होगा, ऐसा है नहीं, फ़र्ज़ करूँ, चौथी दफ़ा कह रहा हूँ ताकि कोई बीच से क्लिप निकाल के ना डाल दे। फ़र्ज़ करें कोई कहे, खुदा ना करे, नऊज़ु बिल्लाहि तआला, ऐसा है नहीं, कोई कहे कि इमाम के लश्कर में एक बंदा ऐसा होगा, नऊज़ु बिल्लाहि तआला, कि वो हर रोज अपनी फजर की नमाज कजा करता होगा, आपका दिमाग मानता है? नहीं मानता। क्यों? आपका दिमाग मुझसे कहेगा कि मौलाना 1100 साल तकरीबन इंतजार किया, और 1100 साल जिस लश्कर का इंतजार किया, आप ये कह रहे हैं कि उस लश्कर में एक बंदा ऐसा होगा जो रेगुलर फजर की नमाज नाउज़ु बिल्लाह ताला कजा करता होगा। अब मौलाना ये कैसे मुमकिन है? मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं एक बात पूछता हूं, अगर मैं रोजाना फजर की नमाज कजा करता हूं और कहता हूं मैं इंशाल्लाह इमाम के लश्कर में जाऊंगा, अब मैं अपने दावे में सच्चा हूं या झूठा हूं? दावे पिछली कौमों ने हमसे ज्यादा या हमारे बराबर के किए हैं, इससे मामला हल नहीं होता। आपको दावा करने के साथ कोई अमल ऐसा करना होता है जो आपका जहन भी कह रहा होता है ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपका एक सहल पसंद आसान तबीयत रखने वाला जहन ये कह रहा होता है इसके बगैर भी चल जाएगा, और अभी आपने खुद कबूल किया कि नहीं चलेगा। तो मुझे सिर्फ एक बात बता देना, ये इतने परसेंट लोग जो हर रोज सुबह फजर की नमाज कजा कर रहे हैं, ये किस उम्मीद पे कर रहे हैं? कैसे चलेगा?

ठीक है, और उस पैसे को वो मेरे हिसाब में कहीं खर्च नहीं करता था। तो मैंने उसको पूछा एक दफ़ा कि भाई जहाँ तुम्हारा सेंटर है उसके पीछे ही एक मोमिन बच्चों का यतीम खाना भी है, मैंने नहीं सुना कि तुम उस सेंटर को कुछ देते हो यतीम खाने को, जबकि मुझे पता है और तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारे पास बैन अक्वामी करेंसी में ढालते हुए तकरीबन $1,00,000 पर मंथ एक्स्ट्रा आता है। उसने खुद बोला था कि $1,00,000 पर मंथ मुझे रिसोर्सेज से सेंटर को मिलता है खर्चा ना होने के बराबर। तो मैंने कहा तुम उनको क्यों नहीं दे देते। मिंबर पे बैठा हुआ हूं, मिंबर पे बैठा हूं। उसने मुझे कहा मौलाना मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं बैंकों में रख रहा हूं, जब इमाम आएंगे तब दूंगा। मैं एक बात सोचने पे मजबूर हो गया, कहीं मैं भी तो वही नहीं हूं, अपना पैसा अपनी रिसोर्सेस दीन पे नहीं लगा रहा और अपने आप को धोखा दे रहा हूं, जब इमाम आएंगे तो लगा दूंगा, कतअन नहीं लगा पाऊंगा। अगर मैं ऐसा हुआ मैं कतअन नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा एक और आदमी क्या कहता है, मौलाना आज तो मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूं लेकिन जिस दिन जहूर हुआ उसी दिन सारी बुराइयां खत्म कर दूंगा। ये दावा है या धोखा है? ये धोखा है। क्यों? एक आदमी मुझसे कह रहा है मौलाना 1 दिसंबर को एक मैराथन होगी जिसमें 40 किलोमीटर दौड़ना होगा, मुझसे तो 400 मीटर भी नहीं दौड़ा जाता लेकिन जिस दिन मैराथन होगी मैं 40 किलोमीटर दौड़ के दिखाऊंगा। ये 4 किलोमीटर दौड़ ले बड़ी बात है, मेरी तरह होगा ये। तो मैं कह रहा हूं जिस दिन इमाम आएंगे मैं सारी बुराइयां खत्म कर दूंगा। सुनने को ही नहीं मिलेगा, सुनने को ही नहीं मिलेगा। क्या पहले नहीं हुआ ऐसा? मौला ने रोज आशूर दुश्मनों से कहा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि तुम्हारे हराम तुम्हारे शिकम में है। इमाम ने कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग ऐसी बुराइयों में मुबतला हों जिनका उनको पता है कि बुराई है फिर भी मुबतला हैं, उनको मजलूम सामने खड़े हुए इमाम की आवाज सुनाई नहीं देती है। और हम सोच रहे हैं कि हमें गैबत में बैठे हुए इमाम की आवाज सुनाई देगी, ये नहीं होगा। फिर अगर किसी ने तब्दील करना है अभी करना है, अगर किसी ने दीन के लिए कुछ करना है अभी करना है, वरना फिर नहीं होगा कभी। ये इमाम की तशरीफ आवरी का तकाजा है जो हमसे किया जा रहा है। अब एक इस मसले में एक पॉइंट और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और वो प्रैक्टिस है जो अब मुझे आपको देनी है ताकि आप यहाँ पे जाने से पहले कुछ आपके हाथ में हो कि भाई कोई पूछे आपने क्या मैसेज दिया, ये मैसेज दिया करने के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। कोई और जगह होती ना जहाँ 3 दिन पढ़ना होता तो मैं जितनी बातें अभी तक कही हैं इनको 2 दिन में पढ़ता आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो लोग सुनने वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुने और कबूल भी करें। मैंने सब उलट दिया, ऐसे ही बोल दिया। क्यों? वक्त नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में से क्या बचा, मुझे नहीं पता इमाम की तशरीफ आवरी से पहले कितना वक्त है। अब भी कोई ये कहना मैं थोड़ा देर कर लेता हूँ सही नहीं, फ़ायदा नहीं है, नुकसान उठाएंगे। अब देर का टाइम नहीं है, अब जो करना है ना कर लो। क्यों? मौत का तो किसी को भी नहीं पता ना कब। मैं क्या गारंटी से कह सकता हूँ आज रात जिंदा हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। तो ये कैसे मुतमईन हो जाऊं कि कुछ ना करूं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कुछ करना होगा। अब मुझे आपकी खिदमत में एक प्रैक्टिकल पॉइंट अर्ज करना है। जो दोस्त अहबाब सुन लेते हैं और बाद वक़्त याद भी रख लेते हैं, मेरे ख्याल में एक जगह जहां मैं जाऊं और मुझसे कोई कहे मौलाना सवाब के अलावा रिजल्ट कोई निकला सवाब के

अलावा तो मैं ये समझता हूँ अगर 20% लोगों ने कोई चीज़ सीख ली काफ़ी है, काफ़ी है। 80%, 70%, 50% मैं गया उस बात से, मैं नहीं कर सकता। 20% लोग सीख लें काफ़ी है, बहुत है। अब मुझे एक पॉइंट कहना है, वो 20% जो सीखने वाले होते हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता इसको ज़रूर सुन लेना और सीखने की कोशिश कर लेना, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। एक दफ़ा मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया, मजलिस के बाद नज़र नियाज थी। ये वाक्य मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा लोगों को सुनाया ताकि मुझे भी याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ कहीं, और मेरे पास ज़्यादा इल्म है भी नहीं, मैं तकरार करता हूँ चीज़ों को। मैं एक दफ़ा एक जगह पे गया मजलिस पढ़ने के लिए, वहाँ नज़र नियाज हो रही थी, मैं नियाज के लिए बैठा हुआ था, एक आदमी मेरे पास आया। वो जगह एयरपोर्ट के नज़दीक थी, रात का वक्त था। उसने कहा मौलाना, वो आया मेरे पास पूरा नहीं बैठा, जैसे यूँ आधा बैठा आधा खड़ा हुआ, इसको कहते हैं तजाफी। हमें दुनिया में ऐसे होना है जैसे जब चाहें खड़े हो जाएं चले जाएं, इसको कहते हैं तजाफी। वो आया इस तरह बैठा, उसने कहा मौलाना मुझे एक सवाल करना है, किसी ने पूछवाया है, फौरन जवाब दीजिएगा, मुझे एयरपोर्ट पे शिफ्ट लगी हुई है, मुझे वहाँ जाना है, तो आप मुझे फौरन जवाब दीजिएगा, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा मौलाना जल्दी से बताइएगा मारिफत इमाम क्या होती है। मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं कौन सा फरिश्ता जो इम्तिहान लेने आ गया है इतनी जल्दी में। माइक्रो सेकंड में मेरे जहन में आया इससे कौन, बंदे खुदा मुझे माफ़ करो कल आ जाना सही से बता दूंगा। फिर मेरे जहन में आया न तुम, ऐसे ही माइक्रो सेकंड में यूं जैसे लहराता है ना बात, मेरे जहन में न तुम जिंदा हो कल पता नहीं, न ये जिंदा है पता नहीं। एक जुमला कोई अकल में आता है तो बोल दो। अचानक मेरे जहन में एक जुमला आया, मैंने जुमला बोल दिया। वो जुमला सोचे समझे बगैर मैंने बोल दिया, शायद जिंदगी में मैंने कम ऐसा किया होगा कि कोई जवाब मैंने इतना बेसोचे समझे बोला होगा, रिस्क लिया मैंने बोल दिया। जैसे ही मैंने बोला अचानक मेरे दिमाग में आया, अच्छा उसने कहा हाँ मौलाना बहुत शुक्रिया, चलने लगा। ओह मेरे दिमाग में आया कि मैंने क्या गलती कर दी, सोचा भी नहीं था बोल दिया। एक आदमी को कहा इसको पॉइंट कर लो, देख लो ये बंदा कौन है, कल मुझे शायद बुलाना है इसको, ताकि अगर मैंने गलत कहा तो इसको बुलाऊं तो सही, इसको सही करूं। उसने कहा मौलाना मैंने इसको नोट कर लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वहीं बैठे बैठे सोचा जुमला सही था या गलत था, तो मुझे लगा जुमला सही था। रात को घर आया, दोबारा सोचा जुमला सही था या गलत था, मुझे लगा सही नहीं था बहुत अच्छा था। फिर मैंने अपने आप से पूछा अगर इतना ही अच्छा था तो तुमने इस पर अमल क्यों नहीं करा, तुम अमल करो इस पे, लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, क्यों ऐसी बातें करते हो जिस पे अमल भी नहीं करते, तुम अमल करो। तो मैंने देखा नहीं जुमला सही है, अमल के काबिल है, अमल करना चाहिए। अब वो जुमला मैंने आपसे अर्ज करना है, छोटा सी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अमल की है। जनाब उसने पूछा था मारिफत इमाम क्या होती है, मैंने उसको एक जुमला कहा था, इमाम की पसंद और नापसंद को पहचानना मारिफत इमाम है। जो इमाम को पसंद है वो तुम्हें पता हो, जो इमाम को पसंद नहीं है वो तुम्हें पता हो। अगर कोई ये करे ये मारिफत इमाम है, सही। मैंने कहा भाई अगर ऐसा ही है तो मैं इस पे अमल क्यों नहीं करूं, कैसे अमल करूं। अब वो बात जो अमल की है, एक सादा सा काम कर लो। आप देखो कुछ आप मेरे बच्चों की उम्र के हो, कुछ लोग मेरे भाई की उम्र के हो, कुछ मेरे बड़े भाई की उम्र के हो गए, सही है, शायद ही कोई बुज़ुर्ग हो जो मेरे वालिद की उम्र का होगा। सब के लिए मुखलिस होकर एक जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह के सामने जवाब दूंगा मैं, ठीक है, इतने लोगों का मैं इतना टाइम क्यों ज़ाया करूँगा, एक जुमला अर्ज करूंगा। आपने जिंदगी में कोई भी काम करना है, जो भी करना है, इस बंदे से दोस्ती करनी है, इसके साथ बैठना है, उससे लड़ना है, टीवी पे ये

देखना है, मोबाइल पे ये देखना है, ये किताब पढ़नी है, ये तस्वीर देखनी है, जो भी काम करना हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, इमाम इस पे खुश होंगे? बस जो मर्जी करना है करो, एक सवाल अपने आप से पूछते रहो, इमाम इस पे खुश होंगे? अगर जहन ये कहे कि खुश नहीं होंगे, मैं आपको तालिबे इल्म होने के नाते गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपका दिमाग कहे कि इमाम इस पे खुश नहीं होंगे, किसी भी मसलहत की खातिर वो काम करोगे, जिल्लत नसीब होगी, खुशी नसीब नहीं होगी, सुकून नसीब नहीं होगा। जो बच्चे गुनाह कर रहे होते हैं ना, सोचते हैं इसको कर लो थोड़ा सा मजा आएगा, बाखुदा मजा नहीं आएगा। जितना तुमको लग रहा है मजा आएगा, उससे 10-10 गुना इसके ऊपर तुमको अपने जहन के ऊपर सख्ती डालनी पड़ेगी। ये निजाम है खुदा का। क्यों? जिनको जिनको अच्छा नहीं लग रहा, वो खुतब आदम है, अल्लाह की नेमतें उनके जरिए से बरसती हैं। अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें कभी खूबी नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी। मुझसे मैं अपने आप से कहूं, बस मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा फजर की, क्यों? मेरी नींद खराब होती है। बाखुदा इमाम को नाराज करके तुम्हें 8 घंटे भी सो लो तो सुकून नहीं मिलेगा। बाखुदा मिंबर पे बैठ के क्या खुशी उनके हाथ में है, बरकत उनके हाथ में है। उनकी नाराजगी जिस चीज में हो, उसमें बरकत कैसे आ सकती है? कोई बंदा कहे, मौलाना मैं थोड़ा सा ही गलत काम करूंगा, मुझे असल में पैसा चाहिए, तो इस पैसे को लेने के लिए मैं थोड़ा सा गलत करूंगा, मैं तुमको बखुदा कह रहा हूं, इमाम खुश नहीं हुए, तुम्हें जो पैसा मिलेगा तुम्हें और फकीर करेगा। और अगर इमाम की खुशी की खातिर कोई चीज छोड़ दी तो क्या होगा? तजर्बे से अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर इमाम की खुशी की खातिर मैंने अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़ दी, खुदा शाहिद है, इमाम उस चीज को या उससे बेहतर चीज को मेरे कदमों में लाके डाल देंगे, कदमों में लाके डाल देंगे। उन इमाम की अजमत पर दुरूद भेजे, मोहम्मद वाले मोहम्मद मुझसे कोई बच्चा कहे मैं फला गुनाह करता हूं चूंकि मुझे मजा लेना है, मैं उससे कहूंगा बेटा ये गुनाह मत करो, अपने इमाम पे एतमाद करो, तुमको ऐसा मजा मिलने वाला है जिसका तुमने नहीं सोचा है। देने वाले वो हैं, तुम तो छीन भी नहीं सकते, तो बिला जमी हिमाकत क्यों कर रहे हो? अपने हाथ से अपने पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो? मत मारो। बस अमल की बात क्या हुई? अमल की बात छोटी सी बात ये हुई, ना इसके लिए उसूल काफी पढ़नी है, ना इसके लिए कोई तफसीर कुरान पूरी पढ़नी है, ना इसके लिए मरीख पे जाना है, ना कहीं और जाना है, यहीं रहते हुए छोटा सा एक काम करना है। वो क्या? जब भी कोई काम करने लगो, अपने आप से एक बात पूछना, इस पे इमाम खुश होंगे? अब मैं थोड़ी सी एक कमी करता हूं, एक जगह सवाल इसकी जगह एक और कर लो, को इस पे इमाम नाराज तो नहीं होंगे? ये थोड़ा सा मैंने कम कर लिया। अगर वो सवाल करूं ना, इस पे इमाम खुश होंगे या नहीं होंगे, तो वो सारी चीजें निकल जाएंगी जो न्यूट्रल होंगी, खुश तो नहीं होंगे, नाराज भी नहीं होंगे। तो मैं कह रहा हूं आसानी के लिए ये सवाल कर लो, इस पे इमाम नाराज तो नहीं होंगे? अगर तुम्हें लगे नाराज होंगे, कभी मत करना। अच्छा, अगर तुम्हारा दिल ये कहे नहीं मालूम नाराज होंगे या नहीं होंगे, खुश होंगे या नहीं होंगे, शायद नाराज नहीं होंगे, कर लो। मशवरा तो ये दूंगा, ना करो, सिर्फ वो करो जिस पे इमाम खुश होंगे, सिर्फ वो करो। लेकिन अगर कोई कहे मेरे जैसा कमजोर इंसान के मौलाना मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं, ठीक है, फिर एक काम करो, करने से पहले पूछो इस पे इमाम नाराज तो नहीं होंगे? अगर तुम्हें लगे नाराज होंगे, छोड़ दो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा?
उससे बढ़कर तुम्हारे

तुम्हारे कदमों में होगा, उससे बढ़ के तुम्हारे कदमों में होगा। और अब इसको देख लो कि हम लोगों के साथ जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है, हम सुकून के पीछे भाग रहे होते हैं, सुकून नहीं मिलता है। बहुत दफा ऐसा होता है। ये मैंने अर्ज कर दिया। अब एक बात और कानून के हिसाब से अर्ज करता हूं, दुनिया के कानून के हिसाब से, जिसके ऊपर खुदा ने खल्क किया है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाजिल फरज। देखो भाई, अब आपसे मेरा कोई रिश्ता सिवाय ईमान के नहीं है, सही, उसी के तहत बात कर रहा हूँ। मैं अब इस एज में आ गया हूँ ना, अब यहाँ तक आते आते मुझे बहुत दौलत नहीं चाहिए होगी, मुझे खबर नज़र आ रही है अपने, मुझे नज़र आ रहा है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, किसी भी टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। चलो जब मैं 30-35 का था, 20-25 का था, तब मेरे एम्बिशंस होंगे और पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा होगा, एंथुसियाज्म होगा, वो सब खत्म हो गया है भाई। अब मैं 60 साल का होने वाला हूँ, चला गया वो, अब मैं दौलत लेके भी क्या कर लूँगा, आगे मुझे मौत नज़र आ रही है अपनी, सही। अब कोई कहे मौलाना आप, आपको अपनी शोहरत चाहिए ना तो ये कर लो, गुजर गई वो बातें, अब कहाँ की शोहरत, अब मैं क्या करूँ उस शोहरत का। अब कोई मुझसे कहे आपकी जिंदगी का हदफ क्या है, एक तो उखरवी हदफ है, उसको मैं अभी कह रहा हूं भी छोड़ दो, उखरवी हदफ मुझे बताओ मैं अपनी बाकी जिंदगी में हदफ क्या बनाऊं। 15-20 साल का बच्चा बैठा हो ना, वो कहेगा मौलाना मेरी जिंदगी का हदफ यह है कि मैंने फला गाड़ी लेनी है, फला विला खरीदना है, फला ये, वो तुम कर लो, तो ठीक है कर लो। क्या तुम कभी मेरी तरह बूढ़े नहीं हो गए, तो तुम्हें अगर 25 साल खेल खेल में गुजारना है ना, गुजार लो, आओगे तुम भी यहीं पे, कहाँ आओगे। दौलत हदफ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। शोहरत हदफ नहीं बन सकती, क्यों? मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को जलील होते देखा है, तुमने नहीं देखा क्या? देखा है। बड़े बड़े ताकतवरों को तन्हाइयों में रगड़ रगड़ के मरते देखा है, नहीं देखा क्या? देखा है। अब मैं कहूं मुझे ताकत चाहिए, उस ताकत के रखने वालों को जलील होते देखा है मैंने, तन्हाइयों में मरते देखा है, क्या मुझे वो अंजाम अच्छा लगा क्या? नहीं। तो मैं अपने आप से पूछता हूं, अब तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या, क्या चाहिए? यह सवाल आप 25 साल की उम्र में भी कर लो, बहुत अच्छा है, एक जवाब दूंगा, यकीन मानो, दिल से अर्ज कर रहा हूं आपसे, एक चीज मुझे चाहिए। वो क्या? मुझे कुछ लोग चाहिए हों जिनको मैं दिल से चाहता हूं और वो मुझे दिल से चाहते हों। हाँ। एक लुमले में मुझे सुकून चाहिए, और मुझे पता है दौलतों से सुकून नहीं मिलता है, शोहरतों से सुकून नहीं मिलता है। सुकून किससे मिलता है? सुकून चाहने वाले लोगों से मिलता है। अच्छा, जब हम लोग ताकतवर होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को अपने पास से भगा चुके होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो वो हमारे नजदीक नहीं आते, फिर हमें तन्हाई में मरना होता है। मैं इतना अहमक नहीं बनना चाहता, मैं अपने आप को इतना पागल नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हों जिनको मैं दिल से चाहता हूं, और कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे हों मेरे अतराफ में जो मुझे दिल से चाहते हों। इसमें सुकून है, इसमें सुकून है। अब मुझे कोई नुस्खा ये बता दे कि ये होता कैसे है। अगर कोई मुझसे कहना मौलाना दौलत कैसे मिलती है, तो मैं कहूंगा भाई किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास चले जाओ, मैं नहीं बता सकता। अलबत्ता मैं बता सकता हूं, मुझे पता है। अगर कोई मुझसे कहे मौलाना ताकत कैसे मिलती है, तो मैं कहूंगा भाई ऐसा करो किसी पॉलिटिशियन के पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देगा। मेरे पास भी एक नुस्खा है, मैं बता सकता हूँ। मैं कहूंगा इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे मौलाना ये चाहने वाले लोग कैसे मिलते हैं, मैं कहूँगा अब आओ मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। आप मुझे बताओ, देखो भाई आप में से कुछ लोग हैं जो मेरी उम्र से ज़्यादा हैं, कुछ लोग हैं जो मेरी उम्र के बराबर हैं। तन्हाई में मरना अच्छा लगता है?